0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो केरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: ए कोड़ो को फाहते जेल अमा आहार में यहाँ कैरी गति में मिहा उन दुगो आने ये ना चाह पिन्नम बनु फ्रेंड नहीं साबे गंती पे मानी
4: आ
5: को बा मिता हूँ ना डस्टबिन ऐहरी दो मेरे से डस्टबिन ना करनो लाम मारी
2: दिवेराज जग आडों बुरी नाला
5: दिवेराज जग मोनिफो ही फिल्म के दायरा के फन्ना नो ना एको
6: फार्डे नो ने ना टिके ने फार्डे नो ने ये मोने बिदायरा हिलाफ में
2: एम में फाहु के रिलीज तका
7: कदे कुछ बुने ने कारी का माइज बुन्ये अहरम बस भरस्सोरी है
2: अरब में न तारिंगे वाह के तब हम चस्ता।
8: बादा मामी मुली हिन्ना वरा मशहूर दिली।
2: चुकु चुकु चुकु।
9: कौन मैं अंगार दो है गिरेगे तो एकार जाए।

0: खबरों का डे
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो राज्य गढ़ के मेरे के खबर गढ़ प्रोग्राम का ही मैंने खबर तो के मुहिम सुरखी तो के तेरेगा रई तुंग मजली हम फास करे वे है बिले रईसो जमहूरिया तस्ते कुरवं बेर फैसे अबे कानून गिना इस्लाह के सबों रिसोर्ट तो के खरत तक हिंगुमा एवस तति कम नेस एकन कुरवे ने कम ग यकीन कंग बे कम रईसो जमहूरिया विदारवं दिवे राज्य के कंडु के सरहद कवा तेला गेहा मौदन के इतुरुं दिरुन ने कंडु के एहनी हिं कुदरती वसीलत तंग होता निगुमा गुले खास कानूनी ओनिकंडे इकुलवालों में वसीरुंग मजली होनी में वों इंसानी वसीला बिना कुर्म जापानों अन्नाहर दिनों में हम जिफ़ा स्कॉलरशिप एबसुम गाती वे सरकारा जापान आदि में तस्वीर करूं ईरान आदि कोला कुर्म दा देमहेटने वे गोते का हंगुरामा नुकुर वेन कमा अमेरिका के कमांडरों बिताल वों आदि वसी द्र खबर था मेरे खबर गड़ी प्रोग्राम आए कि मैं बदल करी मरे मत फादनान तफसील है कुरिया दाना रई तुंग मजली हम फास करे वे है बिले रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज तस्ते कुर वैफी रईसुल जमहूरिया गोफी हो गा बे वे खास रस्मियात का तस्ते कुर वे बिलतो के तेरे बेर फैसा बे कानून गिना इस्लाहाय को बेर फैसा भरोसा वं कुडको दिवे रुफिया दौर वा निजाम का राज्य के माली निजाम बदल कुरवेनी मरहला तक अला फेर तक कम शाह एकम दिहवर कंगहारुना गाने कम कबूल करवे कम रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज वनी विताल वेफा खबर के तफसील गिनस्तेनी न्यूज टीम निशान मोहम्मद दीदी
2: दिवराज्य के इक्तिसोद आदि आदि एहनी दायरा तब सीमिने गोता राज्य कुर्म तफा तफात मसल ता हाल कुर्म सरकार उ मुहिम सके तक कुरब मुगेंद वाकम फा कुरवे एगे तेरेंग एकंक हाल कुर्म टका आदि मी एकंक इस्लाह कुर्म सरकार उ रैतु मजली हम शालाफ वा बिल ता फास कुरवे मियद मिवणी जुमला हाय बिले रैसो जुमहुर मिवणी तस्ती कुर वाफा दे मी बिल ता होगे तेरेगा मी रायतु न फायदा वाणे मी बिल तक कंग मिहुरी हा बिलकी रैसो जमहूरिया वाणी फाह कर वाफा अदि हमे में मी गेतरे में एम में मी मुहिम एबिले गो तो रैसो जमहूरिया हिस्सा कर वाफा वाणी बेरफासा गुले कानून इस्लाह गे नम गे बिलु कंगल नम फाह कर दें देन मी बिला गुले गो तो रैसो जमहूरिया वाणी मी बदलता मी बिला को मी अन बदलता की रायतुन न ए गे फायदा को कुरान कम फाह कर वाफा अदि खास गो ते ग मी हार वेस बेरफासा मार कुरमा बेरफासा गे मुआमला ता खास को राज्य मी एतरवा डॉलर न ता बेरफासा राज्य गे इक्तिसोदशा अदे मी रईतुन कुरान फायदा ता मी फायदा इतर कुरमटका सरकार कणी नेले कुरब मुगेंदवा मसकत होगे तेरे मी गानुन गेनवणु बदल तक कवणी फा कुरवाफा अदि मी गेनवणु बदल तक एको गागण का दिह वरक हरुगे तेरेग मी बदल तक एगोता मी कंकं इस्लाह वे गेंदाण कम गबुल फ्लो कुरवा कम रेस जमहुर वणी विदालफा
3: दिगे रुफिया इन हुरिहा मुअमलाते कुरवे दिमाल दियुं गई आवमेंगेस अमाज आबद सुरिया सरकार के समान इरातु कविया कामा बे हुरिया मुससा त गुलिगें ए अमाज दिमु के मसक के कुरे वने कम एई एदुम देदुम वाने कम नु राज्य के इन्वेस्टमेंट तक लोन तक मि हुरिया कम का गुलि फे बे मिया गुलिगें बैलेंस जे कांतत आउन गबो कुरनी दिह वर कंग हर दो के रास्ता एक नि गम होत दिह वर का हर दोस नगान कम ते हिसाब एको गेंदा
2: मी इतर वे तस्ती कुरविगे इतर बिल तक अणमे अंबादा दायर मी दिवराज्य के इदारी दायर तलामर को जीवसोल हिंग मुगे गानून इस्लाह गे नमुगे बिला अदि हमे हेमे मी मसवरी कमा मी टेक्स नगम बे आम गानून इस्लाह गे नमुगे बिल फद इस्लाह दा की वेस एके की इदारा तक कुरम दा मसक तक इतर लुई तक लिवि इतर बार तक लिविगे दाने बिल तक गोतुग रैस जुमरे आवेस बणी एकं एको तफा कुरवाफा अदि मिफद सरकार गे मिफद दत है कि राय तुंगे हेवा लाभ टका कुरमुंदा कुरवा मसके थोक तेरे मी निर्वे नतीजा तक कमणे फा कुरवा फेहं कम मिकम कमुगा एमें गुलिगें मी फदा इस्लाह ता तंफीज कुरमुगा एमें गुलिगें मसके कुरमा रईस जमहूरिया वणी हुरा फरात तक बसकु आलो वफा रईस जमहूरिया गो फेहं निशान मोहम्मद पीएसएम न्यूज
1: रईस जमहूरिया तस्ती कुरवी बिलत के तेरें को में बिल की वेस एगे सबपुन दिवे हिरई तुन फैदा कुरान फद बिल तक कमा इमिक फाण बिता मी है बिल्स मिहार मिवणी दिवे सरकार